संतरा वचन विश्वास मुखी ने जो खरेखर वचन उन्हें स्वीकार आज करिए आत्मा विचारो जय स्वामीनारायण प्रभु ने गोद मा समय जाए आत्मा विचारो शुद्ध थी जाए आत्मा विचारो सुखी थी जाए विकारो ही रहित प्रभु ना अस्खलित ब्रह्मानंदमय लय थाय आवा संतो ना होत तो शुं थात मोटो प्रश्न छे।